0: इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/sainvachanamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है
1: हेलो आई एम मार्क
2: आई एम कुकी
3: एंड आई एम पाई
4: Together, we bring you the buzz, hush, and the goss.
2: Keep yourself updated with the ongoing Philippine matters and reminisce the original Filipino music favorites.
4: Every Saturday from 12:25 until 2 p.m., Tinig Pinoy brings you the hottest and the latest.
3: Here on Planet FM 104.6.